एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 से रवाना होने को तैयार है। ट्रेन नंबर 1221A चंडीगढ़ कोचीबेली केरला संपर्क।